जोजल पाथौ नेपाल सम्बत चिन्छा सौ पी खुद दिल्लाका दशमी थियो रेडियो नेपाल ख आने नादिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार प्रतिनिधि सभा मिगय बैठके थिति पेङ्गु विधेयक त न्यागुदु बैठके प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह यथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतम संवैधानिक निकाय या दुज तेगु पारिश्रमिक सेवा या शर्त व सुविता नापाया नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 न्याया दिलसा बैठके परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल राहा दानी नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक 2083 व महिला बाल बालिका लैङ्गिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीतावादी मानव बेचबिखन व ओसार पसार नियन्त्रण हापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 बैठक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति हरि ढकाल नेपाल विशेष सेवा एन 2042 साबिक या व्यवस्था हेगु विधेयक नापाया समिति प्रतिवेदन 2083 दुतबिया दिगु दुसा प्रतिनिधि सभा गया बैठक सांसद सन्देया थी थासे झाँका प्राकृतिक विपत्ति निथ मनोतेसा फेमाला चोङ्गु हाछाया विशेष सरकारी ध्यान कोसाला दिगु ख थोयान्यामिग चुङ्गु बैठक या न्हापा विपक्षी दल या सांसद पिसा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह या नोचु भिङ्केता दना विरोध यागु खसा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ई बी धुङ्कानी नेपाली कङ्ग्रेस या सांसद चन्द्रमोहन यादव प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सीमा या विशेष बिहादेगु नोचु भिङ्केता इनाप्याना दिसा जनकपुर या ढल्के बरे देखिगु धागु ट्रास सेन्टर सरकार मेगु थासे यङ्केता सङ्गु विशेष सरकार या लिस फोना विरोधी आगु ख थयालियो सभामुख अर्याल इले इले चो नेता इनाफिया साना सांसद पिसा मज्जिक विरोधियाना चोने धुङ्कानी सांसद यादव हुनादेखि विशेष लिस वित्त सरकार रुलिङ नापाई आगु ख थ्याना बैठके सांसद कृपाराम राणा युवराज दुलाल थुर्व राई खुसबु ओली पिन्सा प्रधानमन्त्री अनुचु भिङ्केता इनाफियाना दिगु ख थोले सांसद पिसा तराई मधेसे हिन्दू व मुस्लिम समुदाय दथि उपया चोङ्गु हाठ्या नङ्केता जिम्मेवार जुया जुइता बजारे खनेदया चोङ्गु ग्यास्या अभाव

मन्त्री गौरी कुमारी आ देय आन्तरिक माग कघा फैगु याना आया जुया चौसान उपभोक्ता पिसा छकहे ग्यासया माग बजारे जुया चङ्गो हाट्या कघा मफुगु धया दिल। सरकार र सुशासन प्रशासनिक सुधार नीति कार्यान्वयन विकास आयोजना अनुगमन खनिनीको व्यवस्था कानुनी प्रतिरक्षा नापाया लागा अल्याख ज्यायागु धागुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदीय कार्यालय मिग सार्वजनिक यागु 2083 वैशाख निशे असार्तकया प्रगति दलस सोलास पुँजीगत पाखे खुई च्यागु फुटी नि खुगु प्रतिशत चालु पाखे झिन्नेगु फुटी 0.7% वित्तीय प्रगति कागु कार्यालय प्रवक्ता हेमराज आचा हेमराज अर्याल जानकारी बिहे दिल। कार्यालय या कथन जेएनजी आन्दोलन लिपाया सेवा प्रवाह विकास निर्माण या लागा लिचोलाईको कथन उपया चोङ्गु सचिव स्तरीय बैठक पाखे मागु उज सहलह समधाल यागु दुस अनियमितता व लिपालाक चोङ्गु ख ज्याता चिका पारदर्शी कोचिना त पाखे सुशासन प्रबन्धन व भ्रष्टाचार नियन्त्रण नीति कार्यालय प्रमुख या त अझ लिस बिगु याना न्योज्या त उजौँ बिगुदु सरकार या सची धलया ज्या धल पाखे लिचोलाईको ज्याया नीति थिथि मन्त्रालय व निकाय नापा समन्वय वा न्याङ्कया प्रगति समीक्षा इलेहे छिलाबुलाया नीति उजौँ व सहजीकरण यानागु कार्यालय या धापुदु। सूचना तथा संचार मन्त्रालय मिडिया काउन्सिल विधेयक 2083 विशेष संसार लगायत स्वपु दुपी नापा सहल व्याकगुदु सहलसँग सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा वोगु थिथि कथया विधायता विचायता दुग्यङ्क दुवाला कघ्यागु धैदिल वेकल प्रेस स्वतन्त्रता या नापाया थिथि स्वतन्त्रता याता प्याची नक्सा थपिसन छेलाबुला या पछि दुगु नापा नेथना दिल। सहलसँग नेपाल पत्रकार महासङ्घ नायक निर्मला शर्मा संचार माध्यम व सामाजिक सञ्जालले अधिकार लगायता पाँचीको त नालाका मागु धया दिल। सरकार दपतिको अपया हुनासँगको मत या नीति ट्रान्समिसन लाइन तब्या केगु नीति कागु दु प्रतिनिधि सभा या पूर्वाधार विकास समिति या मिग सिंहदरबारे चोङ्गु मुज्या ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ दपतिको झिङ्यागु प्रतिशत मत अपैका चोङ्गु तर इनाप या कथा बी मफुगु धैदिल मुज्या सांसद पिसा एकीकृत पूर्वाधार योजना दिएका दुग्याङ्क मताया ज्या यायता इनाप याना दिल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल या पिएसबी या नुमा कार्यवाहक नाय उर्वशी बस्न्यात थगु ज्या या पाफया दिगुदु पिएसबी या ज्याकु रेडियो नेपाली वेक याता पिएसबी या सञ्चालक समिति या दुजा सोभिता रिसाल कायम मुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिइओ आरती चटोटपिसङ वेक याता लसकुसयाना दिगुख पाफे धुङका नयाँ बस्न्याता पिएसबी या त सुशासन व पारदर्शिता या नीति व नागरिक मैत्री प्रशासन देखिएको धैदिलासा पिएसबी या सिइओ आरती चटोट राज्य लल हागु भाला याता पुङ्क ज्यायागु नेथना दिल। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता व यल महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महरजन्दती स्वास्थ्य सेवा तब्याकेको विशेष खलाबला ब्याका दिगुदु मन्त्रालय जुगु नाप्लाई ज्या वैकपिन्दति मानसिक अस्पताल लगन खेल न्हने देखेता सङ्घु अपाङ्ग मैत्री ता नापा महानगरपालिका दुनिया मुख्य स्वास्थ्य लगाय विशेष सहल जुगु मन्त्री मेहता सचिवालय थागुदु थ्वेल सता यल महानगरपालिका दुनिया सरकारी अस्पताल सेवा पिङ्केगु नीति माग स्वास्थ्य उपकरण पूर्वाधार विकास व सङ्घीय सरकार व स्थानीय तह दतीय समन्वय सहकार्य विशेष नापा खलाबला जुगु दु बर्खा चल वना कटानिया हुने देय थिथि थासे सडक डिना चोङ्गु दुसा प्रहरी प्रधान कार्यालय थौ सुते नेता इतक डिना चोङ्गु सडक या थल कथन तेह्रथुमिया मध्य पहाडी लोकमार्ग सिन्धुपाल्चोक या अरणी राजमार्ग इलाम या मेची राजमार्ग रसवा या त्रिशुली मैलुङ च्याप्रुवेशी सडक मुगुया नाग्म गमगढी सडक रुकुम पश्चिम या भेरी करिडोर सोलखुम्बु या सल्लेरी लुक्ला सडक खण्डे यातायात लिचोलाना चोङ्गु धागुदु काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुली स्वाईगु बिपी राजमार्गे जुइको हाट्या याता ध्याने तसेँ खुर्कोट नेपाल थोक कटुन्जे बेसी सडके सनिल खुता इलनिसे सुतेसिया पेता इतक फुक्क कथया सवारी झोल न्याकेगुली पङ्गथना तगुदुसा सुतेसिया पेता इलनिसे सनिल खुता इतक दासा सवारी न्याकीको व्यवस्था मिले यागुदु अथियाना कान्ति लोकपतेन बर्खाया हुने सनिल ज्ञाता इलनिसे सुतेसिया ज्ञाता इतक फुक्क कथया सवारी झोल न्याकेगुली

गतङ्गु 2 मेची राजमार्ग कथा इलाम नगरपालिका 9 राजदुवाली सम्पर्खाया हुने सडक सेना चोङ्गुली यातायात पूर्ण कथन दिनाचोङ्गु 2 छ ओके वैकल्पिक ल छेलेता इनाप्यागु 2 सिन्धुपाल्चोकिया भोटेकोसी गाउँपालिका कथन 0 किलो कोदारी ओ लिपिङ लाग्या चलाउ सडक त्वाधले धुङ्कानी अरणीको राजमार्ग या थिथि खण्ड हानस्याङ्गु 2 सिन्धुपाल्चोकिया लामा सागु रामेछाप सडक खण्ड या दोलखाया तामाकोसी गाउँपालिका 5 किर्ने टारे सामाकोसी खुसी सडक कटान या धुङ्कानी यातायात दिगु दुसा अथि जुसाने खिम्ती ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था कार्यालय परिसर जुसे वैकल्पिक लपु न्याकगु दु अथियाना सोलु खुम्बु या खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका 1 निल दोर्जे पर्यटक सडक खण्ड कथन सल्लेरी लुक्ला सडक वतियर थुमिया लाली गुराँस नगरपालिका 9 काडे पिङवा खोला लिक मध्य पहाडी लोकमार्ग न चलख डिका तगुदु नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा संविधाने आ न्यानाचङ्गु थिथि विशेष संशोधन जुइ फैगु जुसान थो दुनियाँ संवेदनशीलता थुइके मागुली बबिया दिल नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंज्ञा निकगु राष्ट्रिय तमुजा ज्यासु यातामिक कगाना दिसे सभापति थापा संविधान दुनियाँ संवेदनशीलता थुइके मफुसा दे झाँकाके उने फैगु विचार नापा फुङ्का दिल कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी मानव वन्यजन्तु दतिया सह अस्तित्व मकेगु नीति कृषि सेन्चुरी ज्याजो न्याकेता सनागु धया दिगदु मिग चितौने पत्रकार पिना पा खलाबला ब्याका दिसे वेकन मनु यागु थे हे वन्यजन्तु या माया दैगु अधिकार जुई गुली किसी सेन्चुरी ज्याजो हनेता सनागु धया दिल किसी सेन्चुरी थे हे टाइगर सेन्चुरी न हनेगु सोचे सरकार दुगु कना दिसे मन्त्री चौधरी थुज्यागु ज्याजो ल पर्यटन प्रवर्धन महत्वन जागु भाला मितिगु फलसा नापा पङ्का दिल परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल देया परराष्ट्र नीति केन्द्रीय आर्थिक कूटनीतिक दुगु धया दिगुदु चीन भारत नेपाल त्रिपक्षीय स्वापु या छले मिग गोसागको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मन्त्री खनाल आर्थिक कूटनीति आज नेपाली मनुतेगु जीवनस्तरे फिङ्केगु व्यापार लगानी लजग्गा उद्यमशीलता पर्यटन प्रविधि नवप्रवर्तन वा सेनलाईको विकास या भत्ता लल हाइगु जुइगु धया दिल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मोबाइल सेवा या गुणस्तर भिङ्केता उपभोक्ता हित संरक्षण तथा दूरसञ्चार सेवा या पहुँच तव्यता प्राथमिकता तसे मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी या तिथि उज पिथङ्गुदु प्राधिकरण मोबाइल सेवा या गुणस्तर रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम या प्रभावकारी उपयोग अनुमति पत्र या शर्तेको पालना उपभोक्ता हित संरक्षण या त अझ बाला किगु च्यागु धलया उज पिथङ्गु दु रूपन्देही रोहिणी गाउँपालिका निस ने सोमा भूमिहीन यता लालपूर्जा ल लागुदु पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालम हिग लालपूर्जा इनादेशे अव्यवस्थित भूमिहीन तेगो हाठ्या जेङ्केता दीर्घकालीन समाधान या लम्पु देकागो कनादिल मन्त्री लम्सालम स्थानीय तया जनप्रतिनिधि कर्मचारी तेसम प्रमुख जिल्ला अधिकारी नपा समन्वय याना लिय दुपी भूमिहीन तेगो हाठ्या जेङ्केता न याक्न ज्याया त उजम्बिया दिल आदेश पिनिया बुख माफिया नदिसा नेपाया बुख पाकिस्तानी ब्रोड पिक चपु चलखे छवा ह्वाने मधुमा पुर बहादुर गुरुङ युक्त याता मिग स्वयम्बी मिपा त अगुदु गृहमन्त्री सुदन गुरुङ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल स्वयम्बु छेङका राष्ट्रिय ध्वा फ्याका बिचाहाका दिल अथे नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा न बिचाहाका दिगुख भारत या उत्तर पूर्वी आसाम राज्य वालिपा खुसीबाया हुने सिपिनी गु लिया मोटिन गुई हेमा थेङ्गुदु वाया हुने राज्य दुने छगु लाख हेदो मनुत बामलाको लिचो लाख गु दुसा खुसीबाला झिम्पेदो हेक्टर शिव अपो वा पिना तगु बुई नापा श्याङ्का बिगुदु खुनु निसे वगु वाया हुने आपला गामे ल मुना चुङ्गुदु थाइल्यान्ड या राजधानी बैङ्कक या उत्तरी लागा छगु बनेकुठी छमा मचा केको गु गोली लाना मोतिन नेमा मनुषी गुदु झाँका लाना झिङ्यामा विद्यार्थी घापा जुगुदु झिम्पे त दुमा मचा
थ अजा अजिया त गोली के धुङ्का बुने कुठिया यामा शिक्षक या त गोली के गुख झाँका लापी गुमेसियाको अवस्था त चोगुदु गोली के कुमा मचान सिगु थाल्यान्डा प्रधानमन्त्री अतुतिन चर्नेब राकुल धैदी गुख आ मौसम या जानकारी थौँ देनियङका सामान्य निसिन तचैको वा वैगु धागुदु पहाडी हो हिमाली लागा चपु कुहा वैगु न धागुदु कोशी वा बागमती प्रदेश या पहाडी हो हिमाली लागा छगु निगु थासे मन्टीको वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापु दुसा मिग शनि मिग सोनी गले सुइगु डिग्री सल्सियस जति लुगु क्वा ज थौन थथे तानैगु धागु दु सुथे ज्ञा त इजुया नि पेङ्गु मिनेटे लुगु सूर्य शनि ल खुता इजुया निए सङ्गु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुन झिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिसा सुभा

चु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिरी राङ्नी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ लनन दिङ हेन्से भन्द घाटा थेन व्यवस्था बकिया समस्या से नोङबा युलबाङ उद्योग थेन गेन्दुन दा इमान्दार बङ ठिम दा गोसी सेङबा थेन मोकोन ला भङ्ग्याम दोषी सेङसी प्रतिस्पर्धी सोबारी खाम्बा मराङबा मुलाबिसी काइब्लोन भालेन्द्र साहसे सुङबा मुला काइब्लोन साहसे तिनी स्योरी सामाजिक सञ्जाल ग्याम नेपाल मान लिमिटेड हेटोडा क्वान उद्योग नेपाल वायु सेवा निगम दुग्ध विकास घेन्दुन डिडिसी थेन सिंहदरबार वैद्य खानारी लिछाला धुरी तिबा बङ गे सरकारी उद्योग थेन गेन्दुन दा दोषी सेङबारी खाम्बा मराङबा मुला काइब्लोन साहसे युलबाङ उद्योग थेन गेन्दुन डी मराङबा सुधार थेन प्रगतिला ताम सुङबान सेम ज्याबा थान्सी जिम्मेवार ताबान चुनौती थेन छासी गे लबारी खाम्साम सुधारला छार माप ठोङबारी खाम्ला बिसी सुङबा मुला लाना नाम ताइसी निबा ढुई थेन खाबा भालसे युल्ला लानन सडक घ्यालाम कादे बन्द ताबा मुला भाल ढुइला जोखिम दा गोसी काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुली थुइबा बिपी राजमार्गला खुरकोट नेपाल थोक कटुन्जे बेसी सडक घ्यालाम्री न्यासेला ढुङ्यामा हेन्से सियोला ब्लिङ ह्यामा धोना मोटर सेङबारी भन्दन लाबा मुला चुराङ लासिन कान्ति लोकपत्रिनोन न्यासेला घाङ्यामा हेन्से सियोला घाङ्यामा धोना मोटर सेङबारी पिनबा आरे सिन्धुपाल्चोक भोटे कोशी गाउँपालिकाला जिरो किलो कोदारी थेन लिपिङ थुम्री ढुइसे सडक घ्यालाम भास्तीबा लिचा अरनीला राजमार्गला तिलाइ सडक घ्यालाम कादे भन्दन ताबा मुला चुराङ लासिन सोलु खुम्बुला खुम्बु पासङ लामु गाउँपालिका गिग निम दोर्जे पर्यटक सडक घ्यालामला सल्लेरी लुक्ला थेन तेह्र थुम्ला लाली गुराँस नगरपालिका कु काडे प्लिङबा खोला गामला मध्य पहाडी लोकमार्ग ढुइसे भन्द ताबा मुला प्रहरीसे बार्खाला धुरी ढुई भाल्ला जोखिम ताबासे दिम ग्याम फिर्क्याव थोन्बा गाछा सम्बन्धित निकायका दे ग्याम ताम गोसी जेखेन ब्राबारी मिनीका देदा मोइजेन लाबा मुला दाते ह्युल नाङ्री मनसुनी लाबाला प्रभाव मराङबा मुला जलथेन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाला अनुसार मनसुनला निम्न चापीय रेखा सरदर ग्ला ला गाम गाम्री मुला तिनी हुना ह्युल नाङ्री बदली तासेदा मुला विषाम हिमाली थेन पहाडी थुम्ला तिलाई घ्लारी नाम छ्याम घ्लिङनोन ताइबारी खाम्सेदा मुला लाना नाम ताइसी भाल ढुई निबारी खाम्बा ताबासे ओजा थुम्ला मिनिदा सावधानी तासी चिबारी महाशाखासे मैजेन लाबा मुला याम्बु नाङला छ्याम ह्युल्ला लहनन ग्लारी कान सोबा ग्यास चुङबा ग्लुबारी मराङबा समस्या योनन थुम्ना लाबारी सरकार से उद्योग थेन डिपोला अनुगमन तिबा मुला गाछा गाछा राङबान ग्यास खासी चिबा तासाइनोन नेपाल आयल निगम से पाङमानोन मिनिसे ग्यास आयाङबा गुनासो खाबा लिछा उद्योग छोङथेन आपूर्ति ब्लोन गौरी कुमारी से तिनी याम्बुरी मोबा ग्यास उद्योग थेन डिपो कादे च्या सिउबाइखिन ओजा धुरी उद्योग ब्लोन लोबोन गे लाबारी समस्या ताबा मिनिदा प्राथमिकता पिन्ची ग्यास सुङबारी सुङबा मुबा जामेकोला जाजाकोला लैङ्गिक थेन यौङ्गिक अल्पसंख्यक थेन सामाजिक सुरक्षा ब्लोन खाङसे युलबाङ दलित आयोग ग्याम सिफारिस ताबा रुई कादेला सूची तेसी सरोकार ताबा निकायला मुल्मी थेन मिनी कादे थेन सुझाव रिबा मुला युलबाङ दलित आयोग से दातेला ठिम अनुसार दलित थेत्माला रुई कादे सूचीकरण लाबारी सिफारिस छ्याम ब्लोन खाङ्री विवरण पुइबा मुला चु सिफारिस रुई कादे सूचीकरण लाबा गाछा होजान समुदाय सरोकार ताबा मिनी थेन गेन्दुन विज्ञा थेन मिनी कादे ग्याम सुझाव किनबारी ब्लोन खाङसे सूची ते बाखिनला नेपाली काङ्ग्रेसला चोहो गगन थापासे पार्टीला आदर्श दा तेन्सी थान्बान गेन्दुन दा घिग सोसी गाछा बोर्बा बिसी सुङबा मुला डोङबा गोबन श्याम बहादुर कार्कीला चुई कुछा ढान दिन्छेन लाभसरी तिनी सेङबा गेकोर्दी लेङमो थान्सिबान चोहो थापासे पार्टी नाङला आढिकपा तामका देदा ढिक्ना लासी घिक शोभा बिसी सुङबा मुला चोहो थापासे तिनी चिबा धान पोका देला चिसाङसे मियो गे समितिला एजेन्डा शोभा थिएन नाङ्गार हेन्से तिबा मियो गे समितिला चिसाङसे पार्टी गिखेन शोभा ताम्री निर्णय किन्बा बिसी सुङबा मुला
पाकिस्तान ला बोर्ड पिक जोमोगाङ क्रेबा धुरी ग्लिङ धुइसे नाङसी ढोङबा कादेला भ्ला साङ्गे हुल्डी दोगाई बिबान थमेल डी नाङसाल म्राबा मुला थमेल पर्यटन विकास सेङझाङसे पाकिस्तान ला ग्लिङ गाङरी ढोङबा नेपाली छ्याम मेन्दो चुई मिनिला ढाण्डी डोङबा कादेला भ्ला साङ्गे हुल्डी दोगाई बिसी मोलाम लाबान तिलमा न्यासे नाङसाल म्राबा खिला ग्लिङ धुइसे नाङसी नेपाल ला निर्मल पूर्जा निम्सदाई पुर बहादुर गुरुङ किली पेम्बा शेर्पा निमा शेर्पा नवाङ थिन्दु शेर्पा थिएन घेलु शेर्पा ढोङबा मुबा तनहुला ब्यास नगरपालिका थिएन देवघाट गाउँपालिका ला सा आरेबा दलित सा आरेबा सुकुमवासी थिएन खारङ दाबन चिबन खाबा कादेदा सा पिनबा गे तीबा मुला स्थानीय तहग्याम प्रमाणीकरण तासी खाबा सा आरेबा दलित थिएन सुकुमवासी कादेला मिन छ्याम जोङ सा समस्या समाधान समिति तनहुसे सा पिनबा तयारी लाबर मुला बिसी तिलमा निस्राला सूचना तेबा खिन्ला कास्किला रूपा गाउँपालिका से मे मुही ग्लुबा सानम बोन कादेदा अनुदान पिनबा लिछा पालिकारी मे मुही नहवा मिनी कादे लेबा मुला गण्डकी प्रदेश सरकारला रोसी रोरी गाउँपालिका से प्राङबोदा थुम्ना लाबारी ने उत्पादन परियोजना तिसी चु घ्याम सानम बोन कादेदा मे मुही ग्लुबारी टाङ्गा अनुदान पिनबा हिन्ला चु गेसे पालिकारी ने उत्पादन लेबा मुला बिसाम सानम बोन कादेला आमदानी नोन लेबा मुला गाउँपालिकाला चोहो नव राज ओजासे सानम बोन कादेला गेदा डेन लबान उत्पादन मुखे नोर ठिम सोबारी बिसी सानम थुम्री लगानी लेबा हिन्ला बिसी सुबा मुला नेपाली सेनारी भर्ना लासी पिन्ना विवान ठगी लाबा अभियोगरी कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका भ्रेचिबा सोमचुइङा दिङला हरिश चन्दा प्रहरीसे चुङबा मुला हरिश चन्दसे नेपाली सेनारी भर्ना लासी पिन्ना विवान मिनी काडेग्याम लाख नि तोङ ब्लिचुइङ

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशक विभिन्न स्थानमे भोजन बनाबयवला ग्यासक बिक्री वितरणमे देखल गेल समस्या तत्काल समाधान करबाक लेल सरकार उद्योग तथा डिपोक अनुगमनके तीव्र बनौलक अछि। साबिकसँ अधिक परिमाणमे गैस आयात भऽ रहल नेपाल आयल निगमके दावी बीच सहजे गैस नहि पाओल कहैत सर्वसाधारणके शिकायत शीघ्र सम्बोधन करबाक लेल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी आइ काठमाण्डूमे रहल गैस उद्योग आ डिपोके अनुगमन कयलनि। मंत्री यादव बालाजू स्थित नेपाल गैस उद्योग पहुँचकर गैसक आयात बोटलिंग आ बिक्री वितरणके तथ्यांक सम्बन्धमे जानकारी लेलनि। उद्योगक निरीक्षण पश्चात ओ निगमके ठेकुर स्थित कार्यालय परिसरमे रहल डिपोमे पहुँचकर अनुगमन कयल गेल मंत्री यादवके स्वकीय सचिवालय जनौलक अछि। एहि क्रममे उद्योग मंत्री विद्यार्थी मजदूर तथा कठिनाइमे पड़ल नागरिकके प्राथमिकता दऽ कऽ गैस बिक्री करबाक लेल निर्देशन देने छलथि। गैस अभाव देखल गेलाक बाद निगमके निर्देशन एहि साल 16 गतेसँ नेपाल HP एवरेस्ट सुगम आ श्रीराम गैस उद्योग टेकूसँ गैसके बिक्री वितरण कऽ रहल अछि। उपभोक्ताक शिकायत सम्बोधन करबाक लेल निगम क्विक रिस्पॉन्स टीम गठन कऽ गैसके बिक्री वितरणके सहज बना रहल अछि। उपत्यकामे मात्र एक दिनमे लगभग 40,000 सिलेंडर गैस बिक्री भऽ रहल निगम जनौलक अछि। निगमके LP गैस विभागक निर्देशक विनीत मणि उपाध्याय गैसक आयात नियमित भऽ रहल जनबैत अगिला दिनमे आयातके परिणाम वृद्धि करबाक प्रयास भऽ रहल बतौलनि। गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्रीमे सहज पहुँच विस्तारके लेल नेपाल सरकार सिकाई चौतारी नामक अधिकारीके डिजिटल सिकाई प्लेटफॉर्मके सक्रिय बनौलक अछि। विद्यालय तक कक्षा 1-12 धरिक विद्यार्थी शिक्षक आ शिक्षा क्षेत्रसँ सम्बन्धित सरकार भेल निकायके प्रविधि मैत्री सिकाईके अवसर उपलब्ध करेबाक लेल शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय माथदक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सिकाई चौतारीके वेबसाइट आ एप्स मार्फत आगू बढ़ौलक अछि। गुणस्तरीय शिक्षा आ तालीम अवसरसँ प्रदान करैत सभक लेल शिक्षा आ जतय रही ओहिठाम सीखू कहिके उद्देश्यके एहि यात्रा मार्फत जोड़ल गेल अछि। ई पोर्टल शिक्षक अभिभावक आ विद्यार्थीक लेल साझा डिजिटल मंचक रूपमे विकसित भऽ रहल अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वक पहिल मंत्री परिषदसँ पारित नेपाल सरकारक शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूचीसँ सेहो समाविष्ट सिकाई चौतारी एखन धरि 40,449 प्रयोगकर्ता सहभागी भऽ चुकल अछि। एहि मध्य 2,754 गोटे विद्यार्थी, 34,231 शिक्षक आ अन्य 3,464 गोटे रहल अछि। एहि पोर्टलमे एखन धरि कक्षा 1-12 धरिक 58 पाठ्यक्रम राखल गेल अछि। सरकारक 100 सुधारक सूचकमे सेहो समावेश रहल सिकाई चौतारी डिजिटल माध्यमसँ सिकाई सामग्रीमे पहुँच पहुँचबाक विषय विज्ञ सङ्ग जोड़बाक तथा नवीन ज्ञानक खोज आ विस्तार करबाक अवसर प्रदान करबाक लक्ष्य लेल गेल अछि। प्रविधिक बढ़ैत गेल प्रयोग सङ्गे शिक्षण सिकाई प्रक्रियाके थप प्रभावकारी पहुँच योग्य आ आधुनिक बनेबाक सरकारी प्रयासक रूपमे एहिके आगू बढ़ौलक अछि। केन्द्रक उप महानिर्देशक एवं प्रवक्ता महेंद्र पराजुली ई प्लेटफॉर्म एखन शहरी क्षेत्रक शिक्षकसँ अधिक प्रयोग कऽ रहल कहैत शीघ्र सिकाई चौतारीके दूर दराजक शिक्षक सङ्गे विद्यार्थी सभके केन्द्रित कऽ एकर क्षमता आ पहुँच विस्तार करबाक बतौलनि। सिरहाक गोल बाजारमे गोली लागिकऽ निधन भेल गणेश यादवके परिवारके मध्य प्रदेश सरकार पक्की घर निर्माण कऽ देबला भेल अछि। मध्य प्रदेश सरकारक शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री मनोज कुमार सिंह आ मृतक परिवार बीच काल्हि साँझ भेल सहमति अनुसार मृतक यादवक परिवारक लेल 2 कोठली घर, किचन आ शौचालय निर्माण कऽ देबयवला भेल अछि। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विपन संघ मदन भंडारी आवास योजना अंतर्गत मृतक यादव के परिवार के घर बना देबाक सहमति पत्र में उल्लेख अछि। सुनसरीक दीवानगंज घटनाक विषय कल सिरहाक कोल बाजार में एहि साल 14 गते भेल प्रदर्शन के क्रम में गोली लागि यादव के निधन भऽ गेल छलनि। मृतक परिवारक आर्थिक अवस्था कमजोर रहल पाओल गेला कारणे प्रदेश सरकारक दिस सँ घर निर्माण कऽ देबाक सहमति भेल मंत्री सिंह बतौलनि। नगर अस्पताल लालबंदीमे शनि दिनसँ आइसँ हृदय रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा शुभारम्भ कयल गेल अछि। लालबंदी नगरपालिका, नगर अस्पताल आ नेपाल हृदय रोग प्रतिष्ठान सरलाही शाखाक समन्वयमे हृदय रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा शुरू कयल गेल अछि। अस्पतालमे आब प्रत्येक मासक 4 दिन शनि दिन
हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुभाष सुवेदी हृदय रोगक रोगी के सेवा प्रदान करबाक नगर अस्पतालक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर चंदन चौधरी जानकारी दिलन। भरतपुर सरकारी अस्पताल में कार्यरत हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुवेदी लालबंदी नगर पालिका वार्ड नंबर 7 डाडा टोलक स्थानीय बासिंदा सेहो छथि। एहि क्षेत्रक हृदय रोगी उपचारक लेल दूर जायवला बाधता के मद्देनजर रखैत डॉक्टर सुवेदी संग समझौता कऽ हुनका महीना के एक दिन मात्र नियमित बजाकर स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारक व्यवस्था मिलाओल गेल। लालबंदी नगर पालिका प्रमुख वासुदेव अधिकारी बतौलन उच्च रक्तचाप हार्ट अटैक हृदय धड़कन गड़बड़ी भेल रोगी सब डॉक्टर सुवेदी संग स्वास्थ्य परीक्षण कराओल जा सकबाक व्यवस्था मिलाओल गेल नगर अस्पताल जनौलक अछि। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुवेदी सँ सेवा लैत काल रोगी ओपीडी शुल्क बापत 100% तिरबाक आ कोनो प्रकारक परीक्षण नहि करबाक आ करऽ पड़ला पर नगर अस्पताल लैत आयल शुल्क अनुसार हेबाक मेसु डॉक्टर चौधरी बतौलनि। आइ भिनसर लालबंदी नगर पालिकाक नगर प्रमुख वासुदेव अधिकारी हृदय परीक्षण का विशेषज्ञ सेवाक शुरुआत कयल गेल। आइ पहिल दिन 50 गोटे से अधिक रोगी डॉक्टर सुवेदी सँ सेवा लेल गेल नगर अस्पताल लालबंदी जनौलक अछि। मध्य प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के ही 11 गत निर्णय अनुसार धनसाक लेल 979 मैट्रिक टन DAP आ 926 मैट्रिक टन यूरिया तथा महतरीक लेल 931 मैट्रिक टन DAP आ 880 मैट्रिक टन यूरिया वितरण शुरू कयल। कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड जनकपुर धामक सूचना अधिकारी बेचन शाह जानकारी देलनि। सौनक दोसर सप्ताह थप यूरिया DAP मल प्राप्त भेलाक कारण मलक अभाव हटल हुनक कथन रहल अछि। हुनका अनुसार कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड जनकपुर धाम धनसा में हाल 2.6 मैट्रिक टन यूरिया मौजात रहल अछि। सुनसरी आ सिराहा घटना पश्चात स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी कयल कर्फ्यू आ निषेधाज्ञा कारण किछु दिन मलक ढुआनी नहि भऽ सकला पर किछु समस्या भेलाक बावजूदो ई विस्तार ढुआनी शुरू भऽ चुकलाक कारणे मल सहज भेल ओ बतौलनि। डिवीजन वन कार्यालय रोहतहट गत आर्थिक वर्ष 2082-83 में अवैध रूप में वन क्षेत्र से कटान का तस्करी करते गेल 222 क्यूबिक फीट काठ बरामद कलक अछि। डिवीजन वन कार्यालय रोहतहट सार्वजनिक कैल वार्षिक तथ्यांक अनुसार विभिन्न समय में जिलाक वन क्षेत्र से अवैध रूप में आयात निर्यात करित गेल ई परिमाणक काठ नियंत्रण में लेल गेल अछि। कार्यालयक अनुसार ओही अवधि में काठ तस्करी में संलग्न 2 गोटे के पकड़ कर कानूनी कार्यवाही कयल गेल अछि। रोहतहटक विभिन्न वन क्षेत्र से काठ तस्करी हवा क्रम निरंतर रहलाक बाद संलग्न तस्कर के पकड़ाव करबा घटना न्यून रहल देखल गेल अछि। वन कार्यालय आर्थिक वर्ष भर काठ तस्करी में प्रयोग भेल 5 टा सवारी साधन सेहो नियंत्रण में लेल जनौलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय रोहतहट कार्यालय के अनुसार ओही अवधि में काठ तस्करी में संलग्न 2 गोटे के पकड़ कर कानूनी कार्यवाही कयल गेल अछि। वन संबंधी कसूर से गत आर्थिक वर्ष में 5,95,225 टका राजस्व संकलन भेल अछि। वन क्षेत्रक संरक्षण तथा अवैध कटानी आ तस्करी नियंत्रण के लेल स्थानीय समुदायक सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहल डिवीजन वन कार्यालय रोहतहट जनौलक अछि। 12 के जितपुर सिमरा उप महानगर पालिका नगर क्षेत्र भीतर के सामुदायिक विद्यालय सभक शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन के व्यवस्थित बनेबाक लेल 2 टा महत्वपूर्ण निर्देशन जारी कयलक अछि। उप महानगर पालिका विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन स्थायी प्रधानाध्यापक छनौटक प्रक्रिया यथाशीघ्र आगू बढ़ेबाक लेल सब सामुदायिक विद्यालय सबके पत्राचार कयलक अछि। नगर कार्यपालिका कार्यालय द्वारा जारी कयल पहिल पत्र मिति 2083-19 के अनुसार एखन धरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति आ समिति गठन नहि कयल सामुदायिक विद्यालय सब पालिकाक शिक्षा ऐन 2075 पहिल संशोधन 2083 सहित आ शिक्षा नियमावली 2019-10 संशोधन सहित के व्यवस्था अनुसार समिति गठन कऽ आबयवला 10 गते भीतर कार्यालय के जानकारी कराबय पड़त। तोकल गेल समय भीतर समिति गठन नहि करयवला विद्यालय सबके हक में विनियोजित बजट तथा सेवा सुविधाक निकासा रोका कयल जेबाक चेतावनी सेहो देल गेल अछि। एहिना उप महानगर पालिका 22 गते दोसर पत्र जारी करैत नियमित प्रधानाध्यापक के भर में संचालन भऽ रहल विद्यालय सब में स्थायी प्रधानाध्यापक पद पूर्ति छनौट के प्रक्रिया शुरू करबाक लेल निर्देशन देल गेल अछि। पूर्वी नाका काकर भिट्ठा से होबला वैदेशिक व्यापार में आज संगे व्यापार घाटा सेहो बढ़ल अछि। मेची भंसार कार्यालय तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष 2081-82 के तुलना में आर्थिक वर्ष 2082-83 में व्यापार घाटा 40.85% से बढ़कर 26 अरब 38 करोड़ से ऊपर भेल अछि।
आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युवा नेतृत्वक विरोध प्रदर्शनके कारण भारतक शिक्षा मन्त्री द्वारा राजीनामा देल गेल दू सप्ताह पश्चात प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वक सरकार पछिला वर्षमे देखल गेल गम्भीर राजनीतिक चुनौतीके सामना कऽ रहल अछि। रेडियो नेपालसँ सुनै छलहुँ, मैथिली भाषामे समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। लंबे समय से बंद हेटौरा कपड़ा उद्योग फिर से संचालित। उद्योगों और संस्थानों में आशाजनक परिणाम दिखने लगे हैं, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का कथन। सालझंडी संधि खर्क डोर पाटन सड़क परियोजना के निर्माण में तेजी लाई जाएगी, पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल की प्रतिबद्धता। पार्टी में मतभेदों को दूर कर कांग्रेस को एकजुट बनाकर आगे ले जाने का नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा का संकल्प। और चीन के पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर समुद्री तूफान टाइफून डॉल्फिन बढ़ने के बाद हाई अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने लंबे समय से बंद हेटौरा कपड़ा उद्योग को परीक्षण के तौर पर फिर से शुरू किया है। उद्योग संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही नेपाली सेना ने फिलहाल 10 करघरों को संचालन में लाया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौरा कपड़ा उद्योग, नेपाल वायु सेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान और सिंहदरबार वैद्यखाना में किए जा रहे सुधारों से राष्ट्रीय उद्योगों के पुनरुत्थान की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि ईमानदार प्रयास, कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर समन्वय से लंबे समय से बंद अन्य राष्ट्रीय उद्योगों को फिर से संचालित कर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल ने सालझंडी संधि खर्क ढोर पाटन सड़क परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अर्घ खांची के संधि खर्क में परियोजना के स्थलगत निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में डामरीकरण के लिए शेष सड़क खंडों की ठेका प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी है। मंत्री लम्साल ने काम में लापरवाही करने वाले निर्माण व्यवसायियों के खिलाफ सरकार कड़ाई से पेश आने की चेतावनी दी। इस अवसर पर अर्घ खांची के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न मांगे भी उनके समक्ष रखी गई। महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय दलित आयोग द्वारा अनुशंसित उपनामों की सूची सार्वजनिक करते हुए संबंधित निकायों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया मांगी है। राष्ट्रीय दलित आयोग ने प्रचलित कानून के अनुसार दलित समुदाय के उपनामों की सूची तैयार कर मंत्रालय को भेजी थी। सूची को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित समुदाय, व्यक्ति, संघ संस्थाओं, विशेषज्ञों और आम नागरिकों से सुझाव लेने के लिए इसे सार्वजनिक किया गया है। मोगो में 4 साल पहले आई बाढ़ भूस्खलन से विस्थापित सैकड़ों परिवारों का अब तक पुनर्वास नहीं हो सका है। 2079 साल आश्विन में आई आपदा के बाद सरकार ने मोगो को आपदा संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन स्थायी आवास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने से पीड़ित परिवार अभी भी अस्थायी आवास या रिश्तेदारों के सहारे रहने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर निर्माण के लिए अनुदान देने का आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ। जिला पुलिस के अनुसार आपदा में करीब 1300 घर पूर्ण या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा ने पार्टी की आत्मा और आदर्श को कायम रखते हुए संगठन को एकजुट बनाकर आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दिवंगत नेता श्याम बहादुर कार्की की 19वीं स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति थापा ने पार्टी के भीतर के मतभेदों को दूर कर संगठन को एकजुट बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस को नया बनाना मतलब उसकी ऐतिहासिक नींव को पहचानना और अपनी मौलिकता की ओर लौटाना है। उन्होंने बताया कि कल से शुरू होने वाली केंद्रीय कार्य समिति बैठक में पार्टी एकता को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि पार्टी का 15वां महाधिवेशन निर्धारित समय पर ही होगा। कांग्रेस काठमांडू महानगरपालिका 26 वड़ा कार्य समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि महाधिवेशन 16 से 19 आश्विन तक काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। महामंत्री पौडेल ने कहा कि कांग्रेस डिजिटल माध्यम से सबसे अधिक सक्रिय सदस्य वाला दल बन गया है। उन्होंने बताया कि अब सक्रिय सदस्यों के माध्यम से ही स्थानीय तह के उम्मीदवारों का चयन करने की व्यवस्था की जाएगी। म्यागदी के बेनी स्थित प्रदेश अस्पताल में डायलिसिस सेवा का विस्तार किया गया है। गंडकी प्रदेश सरकार के सहयोग से अस्पताल को 3 नए डायलिसिस उपकरण मिले हैं। अब अस्पताल में कुल 9 मशीनों से प्रतिदिन 45 मरीजों को डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इससे म्याग्दी के मरीजों को डायलिसिस के लिए पोखरा पर्वत बागलुंग और काठमांडू जाने की बाध्यता कम हुई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G

0: your entertainment. Log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: रेडियो नेपाल, नया नेपाल को समावेशी आवाज, राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्र को संचार।

रेडियो नेपाल, नया नेपाल को समावेशी आवाज, राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्र को संचार।

रामायण पनि कृपा कृपा कृपा, बाँकी तिम्रो पूजा पाठ तीर्थ यात्रा सब गए खोला खोले। एक उपाय कृपा द्वारा नै, अरू कुनै उपाय छैन, सब यही बताउँछन्। ईश्वरानुग्रह देशा पुंसा मद्वैत वासना, दत्तात्रय हर्ष अवधूत। उनले बताए केवल ईश्वर को अनुग्रह द्वारा कृपा द्वारा अरू उपाय छैन। परातु तच्छ्रुते हा ब्रह्म सूत्र, इसको भाष्य लेखे आदि जगतगुरु शंकराचार्य जीले, त्यसमा पनि बताइए तदनुग्रह हेतु के नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर् भवितुम् अर्हति। अनुग्रह द्वारा नै, भगवान को कृपा द्वारा नै आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी बताउँदै छन्। त्यसैको फलो गरे जगतगुरु निम्बार्काचार्य जीले, रामानुजाचार्य जीले, माधवाचार्य जीले, कृपा कृपा कृपा, अरू कुनै उपाय छैन, कृपा द्वारा नै। कहता वरब्बकुम अल्लाह, इस्लाम धर्म पनि भन्छ अल्लाहको कृपा द्वारा नै अल्लाहलाई जान्न सक्छ, अरू कुनै उपाय छैन। गॉड इज रिच इन मर्सी फॉर हिज ग्रेट लव, उसको जुन मर्सी छ, दया कृपा द्वारा नै हामी गॉडलाई जान्न सक्छौँ। बाइबिल भन्छ फॉर बाई ग्रेस यु आर सेफ, नट अफ योर सेल्फ, इट इज गिफ्ट अफ गॉड। बाइबिल, उसको कृपा द्वारा नै तिमीले अहिलेसम्म जे प्राप्त गरेका छौ, यो देह, मानव देह जुन छ, यो पनि उसको कृपा द्वारा प्राप्त भयो, तिम्रो कुनै कमाल छैन।